जिया उसका जवाब थे उलगरी नोचरा जंगनान सोचू लूजे जंगी नेला उलगरी नोचरा उसने